आत्मा को समझ में संशय कानून अंतिम रूप दिने काम भैया बताइए प्रधानमंत्री सुरेन्द्र वाग्ने बजेट वक्तव्य मार्फत आपू चार आर्थिक वर्ष भित्र विकास योजना संबंधी संशय कानून संसद में पेश करने बताने भाग हो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय में बुझाई करी प्रसन्न तैयार भैया जानकारी दिवस समय में रूप प्रदान निर्माण सामग्री उत्खनन

0: लेकर विषय बनी जाएंगे बाद का प्रकार का पर्व धन्यवाद बनी जाएंगे वैंकटेश्वर को सूत्र से जाएंगे आपको भ्रमण रहेंगे और नकारात्मक इस प्रकार फैलने का ज्ञान है।
1: प्रधानमंत्री कार्यालय सारे प्रतिनिधि सभा परिषद द्वारा

नमस्कार। मैं आप 7 बजे को समाचार मात्र फैलाई स्वागत समाचार का मुख्य शीर्षक पाटा लंबी के प्रदेश मौसम स्वास्थ्य समस्या बढ़ते बढ़िया खरुआ महीना पोखर में 15 दिन सूचना विवाद स्थानीय द्वारा स्थापन को मार करते ज्ञापन पत्र अनुसार छिता सामग्री माथि प्रत्या पढ़ने को कराई ठूल परिणाम में

ராஷ்டிரிய கௌரவ ஸ்வீகார் சிச்சாய் ஆய்வு சொன்னாய் இடம் கொடுப்பத்தினர் உள்ளே பணி ஜில்லா காங்கிரஸ் மகத்துவபூர்ண ஆயோஜனா ததா ஆயோஜனா பிரயாத்தூர்ப்பண சம்பந்தம் கொள்ளும் சரிவு ஜான்காரி தின பிரயோஜார் ராஷ்டிரிய சமாச்சார் प्रतिनिधि सभा को हिजो बस को बैठक में संसद को आईतवार को बैठक में संसद सदस्य सांसद सदस्य अमर्यादित आपत्तिजनक व्यवहार कर तीन सदस्य छानबीन समिति गठन सभामुख तुल प्रसाद अर्याले प्रतिनिधि सभा का सचिव प्रकाश अधिकारी को संयोजकत्व में संघीय संसद सचिवालय को आंतरिक सेवा तथा योजना प्रमुख का प्रवृत्ति महाशाखा प्रमुख सदस्य रहकर तीन सदस्यीय समिति गठन कर उक्त समिति सात दिन भीतर प्रतिवेदन बुझाऊ प्रतिनिधि सभा को आईतवार को बैठक में कही सांसद ने अमर्यादित आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन करे भौतिक क्षति समेत पुर्याउने काम गरेको सभामुखले जानकारी गराउनुभयो। प्रतिपक्षले हिजो पनि सदन अवरुद्ध गरेपछि आजसम्मका लागि तय भएका बैठकको कार्यसूचीका विषयहरू हटाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। समाचार सक्नुअघि समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य समस्या बढ्दै बढे यातायात छ। हरुवामा 15 दिने सूचना विभाग स्थानीयद्वारा स्थगनमा गर्दै ज्ञापन पत्र अनुसार छोरीका सामग्रीमाथि बढ्दै प्रहरीको कडाई ठूलो परिमाणमा चिनी र तरबुजाको बिल बरामद बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न निगरानी र संसदमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सांसदहरूमाथि

0: स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का थी। नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में देती है। यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरफ का कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती।
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ डॉक्टर से प्याज छाती
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी, हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी, पशु की सेवा, नाक का घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे, वीडियो एक्सरे, ईसीजी तथा

0: प्रेशर फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेशर थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: तो विषय बता एम्बुलेंस को व्यवस्था करेगी स्थानीय नागरिक एवं महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगी उसी अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084-00192 और 084-00210 राष्ट्रीय भारतीय संसदीय

वित्तीय कुरा र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध रक्तवंश अनुसन्धान केन्द्रसम्मको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ वित्त

सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल

0: ईलर लगभग थे किस्ता तिर्मसे तो सामा खटा पड़ना हो 3 लाख ऋण लेना हो 3 लाख से फिर तीर से हो अब मन तीर पड़ना कोई बात न था
1: वो अपना 3 लाख रुपया ऋण ले रहे थे 3 लाख रुपया किताब में से लगाती ऋण लेकर पेट में पैसा ब्याज तीर पड़ गया था अपना था जुड़ा वो अवश्य अपना सामा और ब्याज सही था 3 लाख रुपया से ध्यान तीर पड़ना

करी संतुलित खाना खाई व्यायाम सब करी धूमपान वगैरह से दूर रही तनाव नियंत्रण करी आज निर्णय दैनिक जीवन अथवा निशाधार रोग से बांटे स्वस्थ जीवन अपनाई हमारे गुरुवार सहकार्य स्वास्थ्य कार्य अभ्यास जारी सदेश।

सदाय स्वच्छ संघ हो व्यवस्था हो स्तनपाना खाना का संघ नियमित रूप में आयरन कैल्सियम खाने सुझाई स्वस्थदायक सुरक्षित परिवार।

ये किशोरी करा को रकत कमी अर्थात रक्त पटाते पड़वा रक्त पटा विदेशी शब्द टटकरा लगना तो करेगा अनुमान से कभी ना ऊपर है मैं ध्यान दी जा समझ लेना रक्त पटा में से बचा क्या कई साग पात दाल गुड़िया आला मछली शिकार वो फल फूल आयुर्वेदिक खाना नियमित रूप से खाई गांव छोट कर करी संतुलित खाना खाना रुचि स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का भाग हो रेडियो प्रभाव एफएम का सहकारी।

0: गरी अन्न केराकुटी साग सब्जी फलफुल सहित कम्पोस्ट पूरक खानाले बच्चाहरूलाई तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तन पान जारी गरे।
1: रेडियो पूर्वाधार क्याम्पस सहकारमा स्वास्थ्य कार्यालय पटियासे जनहितमा जारी सन्देश।